0: मैं उस अद्भुत विचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, उस अत्यंत महत्वपूर्ण सद्गुण पर जिसे दुर्भाग्यवश और अफसोस के साथ वास्तव में अक्सर भुला दिया जाता है, दया का सद्गुण, दयालु होना। मैं चाहता हूं कि आप एक कहानी सुने। 20 साल पहले मैं टैक्सी चलाकर अपना गुजारा करता था। जब मैं सुबह 2:30 पहुंचा तो इमारत अंधेरे में डूबी थी, सिवाय एक ग्राउंड फ्लोर की खिड़की में जलती एक अकेली बत्ती के। ऐसी परिस्थितियों में कई टैक्सी ड्राइवर बस एक दो बार हॉर्न बजाते, एक मिनट इंतजार करते, फिर चले जाते। लेकिन मैंने बहुत से गरीब लोगों को देखा था जो टैक्सी को अपनी एकमात्र परिवहन सुविधा के रूप में इस्तेमाल करते थे, इसलिए मैं कभी यूं ही चला नहीं जाता था। जब तक स्थिति में कोई खतरे की बू नहीं आती थी, मैं हमेशा दरवाजे तक जाता था। तो मैं दरवाजे तक गया और दस्तक दी। बस एक मिनट, एक कमजोर बुजुर्ग आवाज ने जवाब दिया। एक लंबा विराम के बाद दरवाजा खुला। मेरे सामने 80 साल की एक छोटी सी महिला खड़ी थी। उसके बगल में एक छोटा नायलॉन का सूटकेस रखा था। क्या आप मेरे लिए यह बैग कार तक ले जा सकते हैं, उसने कहा। मैंने सूटकेस बाहर ले जाकर महिला की मदद करने के लिए वापस आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे धीरे फुटपाथ की ओर चलने लगी। वह मेरी दयालुता के लिए बार बार धन्यवाद कहती रही। मैंने कहा, मैं यात्रियों के साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं जैसा चाहता हूं कि मेरी मां के साथ हो। जब हम टैक्सी में बैठे, उसने मुझे एक पता दिया। फिर उसने कहा, ओह वैसे क्या आप मुझे डाउनटाउन से होते हुए ले जा सकते हैं? यह सबसे छोटा रास्ता नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं एक हॉस्पिस जा रही हूं। मैंने रियरव्यू मिरर में देखा और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने लगभग खुद से कहा, मेरा अब कोई परिवार नहीं बचा है, डॉक्टर कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने चुपचाप आगे बढ़कर मीटर बंद कर दिया। आप चाहें तो मैं कौन सा रास्ता लूं? अगले 2 घंटे तक हम पूरे शहर में घूमते रहे। उसने मुझे वह इमारत दिखाई जहां वह कभी लिफ्ट ऑपरेटर के रूप में काम करती थी। हम उस मोहल्ले से गुजरे जहां वह और उसके पति नई शादी के बाद रहते थे। उसने मुझे एक फर्नीचर वेयरहाउस के सामने रुकवाया जो कभी एक बॉलरूम था जहां वह लड़की होने पर नाचने जाया करती थी। कभी कभी वह मुझसे कहती कि किसी खास इमारत या मोड़ के सामने गाड़ी धीरे कर दूं। वह चुपचाप अंधेरे में ताकती बैठी रहती थी, कुछ नहीं कहती थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण क्षितिज पर उभरी, वह अचानक बोली, ठीक है अब मैं तैयार हूं, चलो अब चलते हैं। हम चुपचाप उस पते पर पहुंचे जो उसने मुझे दिया था। वह एक नीची इमारत थी। 2 वार्ड बॉय टैक्सी के पास आ गए। जैसे ही हम रुके, वे बहुत ध्यानपूर्वक और सहानुभूति से पेश आए। वे उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे, वे उसकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने डिक्की खोली, छोटा सूटकेस निकाला, उसे दरवाजे तक ले गए। महिला पहले से ही व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। उसने पूछा, मुझ पर तुम्हारा कितना कर्ज है? मैंने कहा, नहीं तुम्हें मुझ पर कुछ भी बकाया नहीं है। ओह तुम्हें जीविका चलानी होगी, उसने उत्तर दिया। मैंने जवाब दिया, ओह वहां अन्य यात्री भी हैं। बिना सोचे समझे मैं झुक गया और उसे गले लगा लिया और उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसने कहा, आपने एक बूढ़ी औरत को थोड़ी सी खुशी दी, धन्यवाद। मैंने उसका हाथ हल्के से दबाया और धीरे धीरे धुंधली सुबह की हल्की रोशनी में आगे बढ़ गया। मेरे पीछे एक पुराना दरवाजा धीरे से बंद हो गया। ये एक जीवन के समापन की ध्वनि थी। मैं दिन भर विचारों में खोया हुआ बिना किसी उद्देश्य के गाड़ी चलाता रहा। मैं मुश्किल से बोल पा रहा था। क्या होगा यदि उस महिला को सुबह सुबह कोई गुस्सैल ड्राइवर या अधीर ड्राइवर मिल गया हो? क्या होता यदि मैंने भागने से मना कर दिया होता या एक बार हॉर्न बजाकर भाग गया होता? जल्दी से सोचूं तो मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ किया है। मुझे वह कहानी बहुत पसंद है। यह मुझे फिर से जीवन को अपना रास्ता चुनने देने में मदद करती है। तुम्हें वह कहानी याद रखनी चाहिए। वे पल जब तुम दयालु बनने के अलावा कुछ और बनना चाहोगे, क्योंकि यह बहुत आसान है। किसी से बदला लेना, नफरत करना या हिसाब बराबर करना कभी कभी बहुत ही आसान लगता है, लेकिन वास्तव में यह करना हमेशा सही नहीं होता। नफरत उसी बर्तन को नष्ट कर देती है जिसमें वह रखी जाती है। बदले ने कभी किसी घाव को नहीं भरा। एक बात है जो हम सभी में समान है, हमें से हर किसी के साथ किसी न किसी ने गलत व्यवहार किया है। आप में से कुछ ने दुर्व्यवहार, गलतफहमी का सामना किया है, और यह सब आपके दया के भंडार को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। यह आपको कठोर बना सकता है। आप कठोरता के साथ आगे बढ़ सकते हैं, आप इसके साथ तालमेल बिठा सकते हैं। असल में कुछ लोग आपको और भी ज्यादा सम्मान देंगे क्योंकि आप सख्त हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ऐसे मत बनिए। दयालु बनिए, कोमल हृदय वाले बनिए, एक दूसरे को क्षमा कीजिए। जब मैं सच में बदले और कड़वाहट से मुक्त होता हूं, तो मेरे दिल में दया के लिए भरपूर जगह बची रहती है, और इससे पहले नहीं। जो सही है वही करो, न्याय करो, दया से प्रेम करो, अपने ईश्वर के साथ विनम्रता से चलो।
1: शायद आप जन्म से ही बहुत अच्छे, कोमल और मधुर स्वभाव के व्यक्ति हैं, और लोगों के प्रति दयालु होना आपके लिए स्वाभाविक है, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं। और अच्छी खबर यह है कि हम बदल सकते हैं।
2: यह अद्भुत है कि एक दयालु शब्द क्या कर सकता है। हम इसके बारे में कुछ खास नहीं सोचते, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए यह उनके आत्मा में जीवन का संचार कर देता है। हमारे शब्दों में लोगों को उठाने, उन्हें किसी चुनौती से पार कराने और उन्हें उनके भाग्य की ओर आगे बढ़ाने की शक्ति होती है। जब आप किसी से कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने उस प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छा किया, तो आप सिर्फ दयालु नहीं हैं, ये शब्द उपचार करने वाले हैं। हम नहीं जानते लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। वे बाहर से मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन अंदर से वे दुखी हैं, अकेले हैं, हताश हैं। कई लोगों के पास अतीत के घाव हैं, ऐसे रिश्तों के घाव जो सफल नहीं हुए, या उन लोगों के घाव जिन्होंने उन्हें नीचे गिराने की कोशिश की। सिर्फ एक साधारण प्रोत्साहन का शब्द, मुझे तुम पर विश्वास है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, एक साधारण तारीफ, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, यह तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए यह घावों को भरने में मदद कर रहा है। इससे उनका मनोबल बढ़ रहा है, इससे उनमें स्वयं पर विश्वास पैदा हो रहा है। आपके शब्द यही वह चीज हो सकती है जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में लोगों को जानबूझकर इसलिए रखा है ताकि हम उन्हें चंगा कर सकें। लोगों को यह बताना कि आप उनकी परवाह करते हैं आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। आपके पास किसी को अपने पैरों पर खड़ा करने की शक्ति है, आपके पास उन्हें अवसाद में जाने से रोकने की शक्ति है, आपके पास उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करने की शक्ति है। अपनी प्रशंसा में उदार रहें। आप अपने दोस्त के बारे में पूरे दिन अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें कभी बताते नहीं तो उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। अगर परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उन्हें बताएं, तो वह यह बात आपके मन में नहीं लाते। अगर दूसरे व्यक्ति को इसकी जरूरत नहीं होती, तो वह यह विचार आपके मन में नहीं डालते। हो सकता है आप उन्हें जानते ना हो या आपको तर्कसंगत ना लगे, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। कोई कारण है कि उन्हें आपकी चंगाई की जरूरत है। इसे रोक कर ना रखें, इसे तर्क से समझने की कोशिश न करें। अपने शुरुआती 20वें सालों में एक युवा लड़का हमारे साथ जिम में बास्केटबॉल खेलने आने लगा। वह अकेला रहता था, वह बहुत अनमिलनसार और बहुत ठंडा था, वह कभी बात नहीं करता था, यहां तक कि खेल के दौरान भी वह हमसे बातचीत नहीं करता था। अधिकांश लड़कों ने उसे अनदेखा कर दिया था, लेकिन मेरे अंदर से कुछ मुझे कह रहा था कि मैं उससे संपर्क करूं और उसे स्वागत का एहसास दिलाऊं। मैंने पता लगाया कि उसका नाम बो था। जब भी वह जिम में आता, मैं उसके पास जाता और कहता, अरे बो, आज तुम्हें देखकर अच्छा लगा। वह कभी कुछ नहीं कहता था, वह बस अपनी छाती पर दो बार हाथ मारता और चला जाता। मुझे नहीं पता था इसका क्या मतलब है, लेकिन मैंने भी अपनी छाती पर दो बार हाथ मारा और चला गया। यह कई सालों तक चलता रहा। मैं उसे हफ्ते में 4 या 5 बार देखता था। खैर, मैंने वहां बास्केटबॉल खेलना बंद कर दिया और बो को देखे हुए 20 साल से ज्यादा हो गए थे। एक रविवार को वह चर्च में आ गया। मैंने उसे बाद में देखा। मैंने सोचा, मैं इस आदमी को कहां से जानता हूं। उसने कहा, मैं बो हूं, हम साथ में बास्केटबॉल खेला करते थे। यह सबसे ज्यादा था जो मैंने उसे बोलते हुए सुना था। उसने आगे बताया कि वह प्रोजेक्ट्स में पला बढ़ा। 14 साल की उम्र में उसने खुद ही रहना शुरू कर दिया था। कोई उसे नहीं चाहता था। उसे कभी प्यार या अपनापन महसूस नहीं हुआ। उसने कहा, मैं जिम में जाने का एक मुख्य कारण यह था कि आप मुझे कहते थे, आज आपको देखकर अच्छा लगा, क्योंकि किसी ने भी मुझे यह नहीं कहा था कि वे मुझे देखकर खुश हैं। वे साधारण शब्द, जिससे उसे पता चला कि मैं उसकी परवाह करता हूं, उसके लिए जीवनदायिनी जल की तरह थे। आज वो शादीशुदा है। उसने मुझे अपने बच्चों से मिलवाया। वह अपने परिवार के लिए एक नया मानदंड स्थापित कर रहा है। मैं क्या कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति संयोग से नहीं है। अपने अंदर जो महसूस करते हैं, दूसरों को प्रोत्साहित करने वाली उस करुणा को नजरअंदाज न करें। उनका दोस्त बनने की वह इच्छा, समय निकालें ताकि वे खुद को प्यार महसूस कर सकें। यह कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आपको देखकर अच्छा लगा। मैं आप पर विश्वास करता हूं और आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं।